असमेरा बमना को कनी वो मासे दा मना को करू रिका से मेरा बमना को कामी हो रिके मरे मानु की सुन ले नेवा ब्रह्मवा या गगोली मलेला वाले ब्रह्मवा या गगोली मलेला मीबा अम्मु इदा मल्याकु एदान रटनाय एदे गुलुवाय एतुमा इहो बसाय एरोवा मेक्वासाय एहाले नारवानु एहाले नारवामाय किरुवे सिमाकावा बसागा किवरिया नकी वेटुयो मामानु पहला क्या कह रही है ना कि